0: AM 六二一，
1: 听生活，听精彩。
0: 听香港电台普通话台
1: AM 六二一，香港电台普通话台，谱出生活精彩。
2: 打击毒驾和药驾的新法律已经生效。警方有权要求司机接受初步药物测试和提供血液及尿液样本化验。司机吸食海洛因、 K 仔、冰毒、大麻、可卡因或摇头丸后驾驶，即使没有呈现受这些指明毒品影响的症状，也属违法。受这些毒品影响以致不能控制车辆，更可被判监禁三年、罚款25,000元和终身停牌。
3: 由现在到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
4: 从现在到晚上11点是社区参与广播时段，节目由参与 CIBS 社区参与广播服务的社区团体或人士制作。
5: From now to 11 p.m. you'll be listening to programs made by community producers from the CIBS Community Involvement Broadcasting Service。
6: हाम्रो समाजको हर छोरीहरुमा समर्पित हङकङमा रहेका अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको अनेकौं आभासहरु समेटिएको एउटा मिठो रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरु Our Daughters 2.0, जहाँ हामी समेट्नेछौँ उहाँहरुको फरक फरक पृष्ठभूमिमा बाँच्नु भएका अनुभवहरु, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारिता, उद्यम, खेलकुददेखि आजको आधुनिक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मको बृहत योगदान दिनुभएका प्रेरणादायी 13 कथाहरु सुन्नेछौँ। रेडियो कार्यक्रम हाम्रा छोरीहरू Our Daughters 2.0, यस कार्यक्रमको उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका महिलाहरुको प्रेरणादायी कथा मार्फत समाजमा सकारात्मक सोच र समाज